0: ताज महल
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

0: गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सर ढक लेते हैं।
1: दरगाह में भी
0: मत्था टेकने से पहले हाथ मुंह धोते हैं,
1: सजदा करने से पहले भी।
0: दरगाह में कड़ा प्रसाद नहीं मिलता?
1: तबर्रुक मिलता है, मेरी इबादत

0: ताज।
1: हुमायूं का मकबरा।
0: हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,
1: ना नफा ना नुकसान, ना गुनाह ना सवाब, बस बेशुमार मोहब्बत। मुझसे शादी कर लो, फिर हर साल अपनी शादी की सालगिरह यही ताज पे बनाएंगे।
0: हर साल ताज?
1: वाकई?
0: तो फिर कबूल।

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर।
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
2: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
2: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
3: नमस्ते सत श्री अकाल आदाब।

0: your business beyond walls and straight to your audience. Sabrong Radio now comes live to your location, bringing energy, excitement, and real-time engagement. From store openings to special events, from product launches to community celebrations, we don't just promote your business, we create an experience your customers remember. Our team reaches your venue, connects with the crowd, and broadcasts your brand across a wide 250-kilometer network. More visibility, more trust, more customers. Let your business be seen, heard, and celebrated. Book your live promotion today with Sabrong Radio. Your brand, on air and on ground. Visit sabrong.ca or call 403-400-0203.
1: देश पर अपना नियंत्रण कर सकते हैं सुनने में साइंस फिक्शन लगता है लेकिन ये विचार हकीकत बन रहा है
2: नेटवर्क स्टेट शब्द सिलिकॉन वैली में एक टेक निवेशक बालाजी श्रीनिवासन ने गढ़ा था उन्होंने क्रिप्टो खासकर बिटकॉइन से मोटी कमाई की थी विचार ये है कि अगर आप नई मुद्रा बना सकते हैं तो नया देश भी बना सकते हैं
1: लेकिन चंद लोग इतनी दौलत और ताकत हासिल कैसे करते हैं ये क्रिप्टो बाजार से होता है क्रिप्टो बाजार की निगरानी शेयर बाजार जितनी कड़ी नहीं है कई बार ये अरबपति कीमतों में हेरफेर करते हैं और सजा भी नहीं पाते इसलिए क्रिप्टो बाजार और इसके खिलाड़ी कई सरकारों से भी ज्यादा ताकतवर दिखते हैं
3: बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू तो साल 2025 में 3 ट्रिलियन डॉलर से भी ऊपर जा चुकी है ये ब्रिटेन फ्रांस या भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की सालाना जीडीपी के बराबर का स्तर है ऐसे में इन क्रिप्टो करेंसीज को नियंत्रित करने वाले लोगों की ताकत का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है
4: इससे बहुत बड़े निवेशक भी क्रिप्टो की ओर आकर्षित होते हैं जैसे जेन स्ट्रीट और जंप क्रिप्टो वो 100 गुना लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं यानी आप असल में 10 यूरो लगाते हैं लेकिन दाव 1000 यूरो का होता है
1: पर यहाँ बात सिर्फ कुछ हजार की कमाई की नहीं है ये अरबों डॉलर का खेल है और सिर्फ क्रिप्टो के खिलाड़ी ही इससे अमीर नहीं हो रहे
4: असल में पुराने अमीर लोग ही अब क्रिप्टो में आ रहे हैं मसलन डोनाल्ड ट्रंप पहले उनका कारोबार रियल स्टेट का था लेकिन अब खासकर उनके बेटे क्रिप्टो में सक्रिय हैं उनके पास वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जैसे प्रोजेक्ट हैं पैसा वहीं जाता है जहां पहले से पैसा होता है
1: और इनमें से कुछ क्रिप्टो अरबपति सिर्फ दौलत नहीं चाहते वे अपने लिए कुछ ऐसे इलाके बनाना चाहते हैं जिनके कानून उनके मुताबिक हों
3: नेटवर्क स्टेट के विचार को बढ़ावा देने वाले बालाजी श्रीनिवास ने अपनी किताब में तर्क दिया है कि इंटरनेट समुदाय भविष्य में भूगोल से पहले अपनी राजनीतिक पहचान बना सकते हैं यानी लोग पहले ऑनलाइन समाज बनाएंगे और बाद में इसके लिए जमीन तलाशेंगे ये पारंपरिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से उल्टी अवधारणा है
2: खुली आजादी की चाह रखने वाले कई अरबपति ऐसे इलाके बनाने का सपना देखते हैं जो साल 1000 के यूरोप जैसे हों यानी जिसमें कोई सीधा टैक्स ना हो बहुमत आधारित लोकतंत्र ना हो वे चाहते हैं कि लोग पैसे के दम पर अलग अलग तरह की सरकार का ऑप्शन चुन सकते हों
1: कुछ अरबपति इस विचार को जमीन पर उतारने की कोशिश में हैं। होंडुरास में इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोस्पेरा ये एक निजी क्रिप्टो समर्थित जोन है जिसके अपने नियम हैं। बाल्कन इलाके में लीबरलैंड है ये क्रोएशिया और सर्बिया के बीच जमीन के एक टुकड़े पर घोषित माइक्रोनेशन है क्रिप्टो उद्यमी जस्टिन सन खुद को यहाँ का प्रधानमंत्री बताते हैं लीबरलैंड खुद को देश मानता है लेकिन किसी देश ने उसे मान्यता नहीं दी है प्रोस्पेरा ने अलग रास्ता चुना है उसने होंडुरास के अंदर ही अपने नियमों वाला एक जोन बना लिया लेकिन ये हुआ कैसे
3: प्रोस्पेरा होंडुरास के रोआतान द्वीप पर बना है यहाँ अरबपतियों ने नया देश बनाने के बजाय होंडुरास के अंदर ही खास नियमों वाला एक जोन बना लिया समर्थकों का दावा रहा है कि ये अरबों डॉलर का निवेश खींचेगा पर आलोचक कहते हैं कि अभी तक ऐसा कुछ होता दिखा नहीं
2: वे प्रोस्पेरा तभी स्थापित कर पाए जब उन्होंने तख्ता पलट के बाद आई एक तानाशाही सरकार के साथ कोलैबोरेशन किया
1: बाद में सरकार बदल गई होंडुरास ने वो कानून रद्द कर दिया लेकिन प्रोस्पेरा ने इसे स्वीकार नहीं किया
5: दिस आईएसडीएस केस इस आईएसडीएस

0: मामले में होंडुरास सरकार के खिलाफ 11 अरब डॉलर का चौंकाने वाला दावा किया गया। उनका मकसद सरकार पर दबाव डालना था ताकि उन्हें इस जोन को बनाए रखने दिया जाए।
1: 11 अरब डॉलर की मांग होंडुरास की सरकार के लिए एक धमकी थी। होंडुरास का शिक्षा या स्वास्थ्य बजट भी इस रकम से कम रहता है। यही वजह है कि ये मामला दुनिया भर में निवेशकों के अधिकार बनाम राष्ट्रीय संप्रभुता की बहस का चेहरा बन चुका है। इस मुकदमे ने नेटवर्क स्टेट आंदोलन की सबसे बड़ी विडंबना उजागर कर दी।
2: नेटवर्क स्टेट बनाने वाले लोग खुद को सीमाएं तोड़ने में अग्रणी बताते हैं। वो खुद को आत्मनिर्भरता का अगुआ कहते हैं, लेकिन जब फायदा होता है तो निवेश से जुड़े समझौतों और विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं का सहारा लेने से नहीं हिचकते।
1: लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को प्रोस्पेरा से वास्तव में क्या मिला? क्या इससे निवेश, कंपनियां और रोजगार बढ़े? क्या इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ? नेटवर्क समर्थक अक्सर दुबई, सिंगापुर और अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रों की सफलता की मिसाल देते हैं, लेकिन आलोचक कहते हैं कि किसी आर्थिक क्षेत्र और निजी शासन वाले मिनी स्टेट में बड़ा फर्क है। वो सवाल उठाते हैं कि अगर निवेशक कानून बनाने लगे तो आम नागरिकों की भूमिका क्या बचेगी, और अभी तो इन मिनी स्टेट्स ने सफलता का स्वाद भी नहीं चखा है।
0: हकीकत ये है कि निवेश बहुत सीमित रहा। वहाँ मूल रूप से एक इमारत और कुछ छोटे मोटे ढांचे हैं। ये काफी हद तक एक रिजॉर्ट जैसा है।
1: क्या प्रोस्पेरा जैसे प्रोजेक्ट केवल इक्का दुक्का प्रयोग हैं, या फिर वे एक बड़े बदलाव का हिस्सा हैं, जिसमें अमीर क्रिप्टो उद्योगपति सरकार और लोकतंत्र को नए तरीके से देख रहे हैं?
2: चिंता होंडुरास की इन शानदार छुट्टी बिताने की जगहों तक सीमित नहीं है। ये तो सिर्फ कुछ परेशान करने वाले लक्षण हैं। असली कहानी टेक और मागा गठजोड़ की है, जिसने अमेरिका के भविष्य के लिए एक जोखिम भरा आधार तैयार किया है।
0: प्रोस्पेरा को पीटर थील जैसे अरबपतियों का समर्थन मिला है। अब एआई बूम के दौर में एआई टेक अरबपति भी नियमों में ढील की मांग कर रहे हैं।
1: पीटर थील लंबे समय से पारंपरिक लोकतंत्र के आलोचक रहे हैं। वे समुद्र में तैरते स्वतंत्र शहरों की अवधारणा का समर्थन भी कर चुके हैं। इसलिए भी प्रोस्पेरा को कई विश्लेषक सिर्फ एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बजाय एक बड़े वैचारिक प्रयोग का हिस्सा मानते हैं। इसलिए ये बात साफ होनी चाहिए कि भविष्य की सरकारों की ताकत, उनका काम, उनके अधिकार क्या होंगे, इसका फैसला हमारे बीच से ही हमारी रोजमर्रा की दुनिया को बनाने वाले तय कर रहे हैं। दिलचस्प बात है ना कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की अर्थव्यवस्था कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियों की मार्केट वैल्यू से छोटी है। ऐसे में ये अपनी संप्रभुता को लेकर कितने दिनों तक सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, वो भी ऐसी दुनिया में जब विश्व संस्थाएं खुद अपनी ही सुरक्षा करने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। सवाल यही है कि अगर ये क्रिप्टो और टेक अरबपति अपनी आर्थिक ताकत का राजनीतिक ताकत की तरह इस्तेमाल करने लगें, तो क्या वर्तमान विश्व व्यवस्था और विश्व संस्थाएं इन्हें रोक पाएंगी?

0: ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੇਂਜਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਈ ਵੈਬ ਗਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 403-400-0203-400-0203 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ www.iwebguy.ca
1: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर
2: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है
1: मिलिए डॉक्टर मगर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से
2: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर
1: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रीन कब तक इंग्लिश हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है
2: नए किड्स का खैर मुकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक लें
1: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवार्ड या कॉल कर 5783608 7360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक
2: आपकी सेहत हमारी

0: all over the country चल रहा है प्रोजेक्ट एंड सेकेंड इज आर ओन इनबिल्ट इन हाउस पायस 2.0 ऐप FRS सीसीटीवी फुटेज ते जिहड़ा साडा पायस दा डेटाबेस है या CCTNS दा डेटाबेस और व्हाटएवर वी आर पुटिंग इन ए दोनों नू मैरी करके मर्ज करके इट इज प्रोड्यूसिंग आउटपुट्स ऑटोमैटिकली सो इट इज सेविंग ऑन आवर ह्यूमन रिसोर्स.
1: खन्ना पुलिस वालों वरती गई चेहरा पहचान प्रणाली यानी FRS विच डाटा मुख तौर ते पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अते केंद्र सरकार दे अदारे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम भाव CCTNS तो लिया जाता है. याद रहे कि 2020 विच भारत सरकार ने इस तकनीक नू लागू करने लई मंजूरी दित्ती सी. उस समय तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने राजसभा विच ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बारे एक सवाल दे लिखती जवाब विच दस्या सी कि इस दे लई पुलिस रिकॉर्ड दी वरतों होवेगी अते ए सिर्फ कानून लागू करन वालियां एजेंसियां दी पहुंच तक ही सीमित रहेगा.
2: सो ए सीगी जी पंजाब दी कुछ गलबात ते मैनूं लगदा वी समां जिहड़ा बड़ी तेजी दे नाल अगे वधदा जा रहा है. एक पंजाब दीआं कुछ एक हैडलाइनस भी सुन लैने. पंजाब च वैसे की अजकल चल रहा थोड़ी जी खबरां सुन के ते फिर वापस मिल जाए तो बाकी दीआं खबरां ते गल्लां बात जिहड़ियां इसे तरीके नाल चलनगियां. क्योंकि खबरां पंजाब दीआं भी सुनियां मैंने तो थोड़ा जहा लेंदे पंजाब वाले पासे नूं चलदे आं. उत्थे भी कुड़ियां कहंदे भी स्कूटियां चला रही हैं उन्हां दी भी कोई परेशानियां ने. ओह की कहंदियां
3: सारे रुके हुए और बस लड़कियां जा रही और सारे देख रहे हैं.
4: बहुत अच्छा फील हुआ. प्रोटोकॉल के साथ साथ एक फ्रीडम फील हुआ. लड़कियां बाहर निकली हैं ऐसे मतलब नॉर्मली नहीं निकलती. फैसलाबाद में तो वैसे ही ट्रेंड बहुत कम है तो इट वॉज ग्रेट.
5: खवातीन के ऐसे ग्रुप के साथ मूव कर रही हूँ जो कि मीट एंड ग्रीट कर रही हैं जिनको गर्ल्स ऑन स्कूटी कहा जाता है. यानी कि वो खवातीन जो कि आजकल स्कूटी चला रही हैं और ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की है और ये एक हॉर्न की आवाज ये बताती हैं कि हम मूव कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक इनके लिए रुकी हुई है. ये रैलियाँ निकाली जा रही हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में.
6: हमारी सवारी
4: हम चाह रहे हैं कि रोड पे हर वो लड़की जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है रोड पे वो स्कूटी नहीं चला सकती या बाइक नहीं चला सकती डरती है किसी दूसरे पे डिपेंड कर रही है हम उन लोगों को कॉन्फिडेंस दें.
7: जदों तुसी स्कूटी उते जांदे हो ता किहो जिहा वतीरा देखण नूं मिलदा है.
8: लोग बहुत ज्यादा घूरते हैं आपको उनको लगता है कि बहुत कोई अनयूजुअल सी एक्टिविटी हो रही है और यू नो औरत एक ऐसे निकल आए. वियर्ड रिएक्शन नहीं मिलते 360 हेड रोटेट मिलते हैं.
9: मुझे तो अभी तक ऑनेस्टली बहुत बुरा रिएक्शन नहीं मिला अच्छा ही रिएक्शन मिला है. मतलब मेरे ख्याल में अभी इससे मजीद बेहतर हो सकता है लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मुझे बुरा रिएक्शन नहीं मिला.
10: मतलब लोगों का माइंडसेट जो है वो बहुत ऐसे ओल्ड एज है. आप बाहर निकलेंगे तो आपको हर कोई स्टेयर करता है ऐसे अजीब सा रिएक्शन देता है
11: काफी बुरा लाइक हर कोई इस तरह देख रहा होता है तो वो काफी बंदे को ऑकवर्ड फील होता है.
7: तो हम स्कूटी चलाते हैं सब तो वाद औखियाई कदों होती है
12: लड़के वगैरह हो वो पीछे आई जा रहे होते हैं कभी ऐसे बच जाते हैं एक्सीडेंट भी हो जाता है और कोई हम अपनी स्पीड में जा रहे हैं उनका नहीं हमने इनसे पहले निकलना ऐसे रेसेस वगैरह भी लगाते हैं और कोई लोग ऐसे भी कहते रहते हैं वो देखो लड़की चला रही है ऐसे कर रही है वैसे कर रही है.
13: लोग ओवर टेकिंग बहुत करते हैं खासतौर पर जो मेल होते हैं ना वो फीमेल को देख के बहुत डिस्टर्ब करते हैं उनसे हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो जाता है.
14: तो हम जब वैसे नॉर्मली रोड पे कह रहे होते हैं ना सबको होता है कि बस जहाँ से जगह मिल रही है ना वहाँ से निकल जाए बेशक वो फुटपाथ ही क्यों ना उसके ऊपर से चल के चले जाए बस जल्दी से पहुंच जाए और उस चक्कर में ही एक्सीडेंट की ज्यादा इश्यूज होती हैं.
7: बीबीसी दे नाल गल करदिया इन्हां औरतां ने दस्या कि उन्हां नूं स्कूटी चलाउणी उन्हां दे पिता भरा पति या किसी सहेली ने सिखाई.
8: मेरे बाबा सिखा रहे थे और लाइक ऑब्वियसली बात है कि जब बंदा पहली दफा सीखता है तो यू टर्न तो लेना नहीं आता तो मैंने यू टर्न लेते हुए जाके गिरा दी थी बाइक और उसके बाद मैंने बोला था कि नहीं नहीं मैंने नहीं चलानी आती और फिर मुझे बाबा ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करते देखो एक चीज शुरू की है तो फिर आपने उसको सीखना है तो फिर तब से मैंने शुरू की हुई है और अब आज मुझे 7 साल हो चुके हैं.
7: जदों तुसी स्कूटी चलानी शुरू की थी तो तुम्हारी जिंदगी किवें बदली.
13: स्कूटी लेने के बाद बहुत मतलब डिफरेंस आया है कि पहले मेरे मियाँ को बच्चों को लाना पड़ता था जब से मैंने ली है मैं खुद लेके आती हूँ बहुत मतलब कि सहूलत हुई है मुझे.
8: मुझे बहुत फर्क पड़ा. मैं स्कूल बाइक पे जाती थी फिर मैंने कॉलेज भी शुरू किया तो अभी यूनिवर्सिटी में बाइक पे जाती हूँ तो उससे دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والی جو چیز ہے نا وہ ختم ہو گئی. اب مجھے کہیں پہ بھی جانا ہے تو میں خود اپنی

0: निकालती हूँ और कहीं पे भी चली जाती
1: हूँ। मैं आने जाने लाइक कोई घर का सामान हो या बाकी चीजें हो, ग्रोसरी वगैरह, और आने जाने ट्रेवल के लिए भी मैं इस्तेमाल करती रहती
2: हूँ। मैं स्कूटी ओवरऑल हर चीज के लिए, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए यूज करती हूँ, ठीक है, इवन घर के कामों के लिए यूज करती हूँ, और मैं अपना कॉन्टेंट भी बनाती हूँ और वहाँ पे भी यूज करती हूँ।
3: मैं अपने बेटे को स्कूल लेके जाती हूँ, लेके आती हूँ, और मैं अपना ब्रांड स्टार्ट कर रही हूँ, उसकी शॉपिंग सारी मैंने खुद ही की है, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो ये है कि मैं खुद ही जा सकती हूँ और मुझे कोई मसला नहीं होता कन्विंस का। जब मैंने स्कूटी ली और चलाना सीख लिया तो अब मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मतलब हम बाहर जा सकते हैं, ये सड़कें जितनी लड़कों की हैं उतनी लड़कियों की भी हैं।
4: लड़कों को लगता है कि स्कूटी चलाने में या बाइक चलाने में क्या इनकी एम्पावरमेंट है, तो उनको ये आइडिया ही नहीं है कि हमारी फीमेल्स को जितना वो घुट के रखा गया हुआ है ना, वो अगर उनके लिए स्कूटी चलाना सिर्फ एक फ्रीडम है। और मुझे लगता है कि ये मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये इतना बड़ा फ्रीडम है ना, लाइक हम अपनी मर्जी से आ रहे हैं जा रहे हैं, अब किसी की हमें मिन्नत नहीं करनी पड़ी, हमारे लिए वो वुमेन एम्पावरिंग में ही काउंट होता है।
5: बिल्कुल जी, ये वुमेन एम्पावरमेंट की गलबात सुनी है तो लेंदे पंजाब तो, क्योंकि पाकिस्तान वाले पासे भी जड़ियाँ कुड़ियाँ ने, क्योंकि जिथे जिस तरीके ने लोकल जैन जी वाले कमाल करके दिखा रहे ने, इस तरीके पाकिस्तान दे भी जड़ियाँ मूवमेंट चल रही, तो काफ़ी कुछ उत्थे देखने को मिल रहा। कुछ एक क्विकली खबर के उत्ते भी नज़र मार ली, जड़ियाँ अजकल दियाँ चल रही ने मेन, तो क्योंकि तुहानू पता भी जिदा मैं पहला भी गलबात की 911 की एक गलती करके जरा मनिया जा रहा भी मुंडे का ज़्यादा जल्दी पता नहीं लग पाया, पार्कर जरा 911 के एक इंपलॉई नू जल्दी कोशिश करनी चाहिए सी कि जड़ा उन्हें भी गलती करती। इस तों अलावा जड़े साडे BC दे प्रीमियर ने, प्रीमियर AB जड़े ने, उन्होंने काफ़ी वधिया डिसीजन लिया कि 24 तरीक नू वो प्रोग्राम करन जा रहे ने नवे इलैक्शन का, तो 24 तरीक नू इलैक्शन जड़े ने वो होणगे। इस तों अलावा लोकल जड़ियाँ कई खबर सगिया जिद उत्ते मैं नज़र मारी सी अज ते वास्ते भी चलो अपडेट कर देंगे नाल नाल जाते जाते, क्योंकि ये प्रोग्राम मंडे ट्यूजडे थर्सडे फ्राइडे तो हुंदा ही हुंदा, बट शाम नूं तुसी काफ़ी खबर सुन लेंदे हो। एक छोटा जिहा कमर्शियल मैसेज सुनदे फिर इस तों बाद वापस मिलदे हां जी।
6: अपनी वैबसाइट है पर तुसी टैक्स फोटोज या वीडियोस चेंजेस खुद नहीं कर पाते, ता तुहानू लोड है आई वेब गाय वाले नू 403-400-0203 403-400-0203 ते कॉल करन दी www.iwebguy.ca।
7: एयरड्री अब आपकी फैमिली की सेहत को मिल गया है एक नया घर।
8: पेश है लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक, जहां बेहतरीन देखभाल आपके बिल्कुल करीब है।
7: मिलिए डॉक्टर मघर शाह और डॉक्टर समरीन रहमान से।
8: हमारे तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको देते हैं मुकम्मल केयर,
7: खवातीन की सेहत से लेकर बच्चों की देखभाल और रूटीन चेकअप तक। इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में कंसल्टेशन दस्तियाब है।
8: नए पेशेंट्स का खैर मकदम है और वॉक इन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले हैं।
7: आज ही विजिट करें किंग्स व्यू बुलेवर्ड पर, या कॉल करें 587-360-6890 687-360-6890 लाइफलाइन मेडिकल क्लिनिक।
8: आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी।
9: अपने बिजनेस को दीवारों से बाहर निकालिए और सीधे अपने ग्राहकों तक पहुंचाइए। सबरंग रेडियो अब आता है लाइव आपके लोकेशन पर, जहां होता है एनर्जी, एक्साइटमेंट और रियल कनेक्शन। चाहे हो आपकी शॉप ओपनिंग, कोई खास इवेंट, प्रोडक्ट लॉन्च या कम्युनिटी सेलिब्रेशन, हम सिर्फ प्रमोशन नहीं करते, हम आपके ब्रांड को एक यादगार अनुभव बना देते हैं। हमारी टीम पहुंचती है आपके पास, लोगों से जुड़ती है और आपकी पहचान को फैलाती है पूरे 250 किलोमीटर के नेटवर्क में। ज्यादा पहचान, ज्यादा भरोसा, ज्यादा ग्राहक। अपने बिजनेस को बनाइए खास, दिखाइए, सुनाइए और सेलिब्रेट कराइए। आज ही बुक कीजिए सबरंग रेडियो के साथ, आपका ब्रांड ऑन एयर भी और ऑन ग्राउंड भी। Monday, Tuesday, Thursday and Friday, 7 to 8 p.m. Sunday, 1 to 5 p.m.
10: Asia Pacific Immigration Consulting Limited. Student Visa, Visitor Visa, Super Visa, LMIA Applications, Family Immigration, Provincial Nominee Application, ate Citizenship Application vich lamba tajruba te maharat rakhta hai. Tuhadi sahulat layi, main Maninder Singh Tillon ate Inderjot Kaur Tillon ikko chhat hethe Immigration ate Insurance diyan sewawan pradan karde hain. Sanu sampark karn layi 403-225-1111. Maninder Singh Tillon, Asia Pacific Immigration Consulting.

0: 107.7 FM. Before I go to my guest, सबसे पहले सलमा जी यहाँ पर मौजूद. हेलो सलमा जी, कैसी हैं?
1: हेलो जलाल, थैंक यू. आई एम डूइंग रियली वेल. तो मैं भी सब लोगों को खुश आमदेद करना चाहूंगी. आप सब लोगों को सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, याली मदद एंड अ ब्यूटीफुल इवनिंग. उम्मीद है कि आप लोगों का बहुत अच्छा हफ्ता गुजरा होगा, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त लाइक का सीजन के लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त. तो आज भी हमारे पास हमारे गेस्ट आ चुके हैं, तो हम उनसे बात करेंगे वो किस सिलसिले में यहाँ पर आए हैं. तो हमारा और आपका साथ रहेगा रात के 9 बजे तक, कहीं जाइएगा मत.
0: इंशाल्लाह. यू नो, बिफोर वी गो टू आवर गेस्ट, जो हमारे पास, यू नो, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट वन ऑफ माई फेवरेट चैरिटी, जो है तकमील का इवेंट होने जा रहा है, फंडरेजर ऑन सब, जो कि अक्टूबर 2nd को फ्राइडे नाइट को होने जा रहा है एट सुल्तान बैंक्वेट हॉल. तो इनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, इंक्लूडिंग वन ऑफ आवर रियली गुड फ्रेंड ज़ैनब खान. ज़ैनब खान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं?
2: वालेकुम अस्सलाम जलाल भाई, एंड इट्स अ प्लेजर टू बी हियर वंस अगेन.
0: थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन
2: सलमा जी. थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, एंड अ ह्यूज शाउट आउट टू रेडियो सुर संगम.
0: यस, थैंक यू. उनके साथ यंग, बड़े यूथ, अपना यूथ स्पेशल यू कैन से. यहां पर तहा, यहां पर मुझे, हेलो तहा, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम
3: जी. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तहा. अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी टू बी हियर. इंशाल्लाह आज तकमील के बारे में जब बात करेंगे, it will be very interesting to talk about the topics that we have.
0: जी जी, ओके. व्हाट्स योर लास्ट नेम? था
3: गुमन.
0: गुमन
3: जी.
0: अच्छा गुमन, ओके. वेलकम टू अवर स्टूडियो. यू नो, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट जो है तकमील, आई थिंक मैंने वी स्टार्टेड समथिंग बैक इन द डेज के जो है ट्यूजडे को लेकर, यू नो, लेट्स स्टार्ट टुडे. आई थिंक आज हम बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करने वाले हैं. सो जो है गुड न्यूज ट्यूजडे, तो आज गुड न्यूज क्या शेयर करना चाहेंगे? ता विल स्टार्ट विथ यू बिकॉज यू आर द न्यू वन. एनी गुड न्यूज, किसी का जन्म, किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी या कुछ भी, आप जो, और इफ यू डिड समथिंग राइट.
3: आजकल आई बीन वेरी इनटू मतलब फिलैंथ्रोपी, मतलब
0: एनीथिंग.
3: हां, मतलब आई बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओस. इसके अंदर मुझे बहुत, आई फील लाइक इट्स अ गुड थिंग टू इंडल्ज इन ऑल दीस डिफरेंट fields and see all these beautiful things.
0: Oh, so yeah, so you are giving back to community. Oh, this
1: good
0: is really nice. Very good.
1: That's
0: what about you, Zena?
2: I think every day there are many things to be grateful for.
0: Yes.
2: For me, I think aaj ki good news mein my cells that I was culturing, they looked healthy.
0: Yeah.
2: And I was happy for them, so I can do my experiments. So I think that was a good news for me.
0: Oh, that's very nice.
1: That's so great. That's
0: what about you, Salma ji?
1: Oh, main subah jab uthti hun aur main आँख खोलती हूँ तो मुझे सबसे पहले शुक्र अल्लाह का करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने उठा दिया और आज का दिन मुझे और मिला है कुछ अच्छी चीजें करने के. दैट इज माय थिंग. बट मैं आज सब लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि इंशाल्लाह ऑन सैटरडे आई एम रिसीविंग अवार्ड फॉर SAIA साउथ एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड. सो या, थैंक यू. सो दैट इज माय गुड न्यूज टू शेयर विद एवरीवन बिकॉज इट्स दिस कमिंग अप सैटरडे.
0: मुबारक हो आपको
1: जी.
0: अपना फ्यूचर में फॉर माई सेट देर आर फ्यू. फर्स्ट ऑफ कोर्स अभी जैसे ज़ैनब ने पूछा कि माय सन गॉट द PhD, उसका डिफरेंस थैंक यू सो मच. यू नो इट्स ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच एवरीवन. और फिर October 3rd का हमारा शो, इट्स सोल्ड आउट.
1: Yeah,
0: which is really good. So another good news, and of course October 2nd is yours. Inshallah, that will be sold out as well. So that's good news from our side. अगर आपके कोई good news हो, you can share on our जो Facebook की feed अभी चल रही है, you can share that. किसी का जन्मदिन हो, किसी को आपने जो रास्ता cross करा दिया, किसी को आपने 5 रुपए tip दे दी. These all good news, and of course small. जो वो जो कहता है ना कि कतरा कतरा मिलके फिर समुद्र बनता. तो all these good news, inshallah, will make it a great impact on our community or in individual as well. Right. So that's my lecture for the day.
1: तो आपने अपनी गुड न्यूज एक ही बताया, आपके पास दो तीन थी, आप कह रहे
0: हैं. सो October 2nd में सोल्ड आउट.
1: सो दैट्स टू.
0: अल्हम्दुलिल्लाह. ज़ैनब, तकमील, यू नो, लाइक, यू नो, वन ऑफ माय फेवरेट चैरिटी, इंशाल्लाह इनका इवेंट होने जा रहा है October 2nd को. इस बार देयर आर, आई थिंक देयर आर मोर, I think you guys are adding every year something new to the event.
1: That's,
0: I think,
1: great.
0: This is jo hai really good to see. To iski kya abhi next event jo hone ja raha hai unki thodi detail, apne details dein, aur jo hai takmeel ki thodi update ki kya ho raha hai aajkal.
2: So Jalal bhai, I think takmeel ki jo journey shuru hui thi chand saal pehle, hum log ke sath hi shuru hui thi. I remember jo pehla studio tha, and then ab hum log jo hai mashallah se har saal aapke paas aate hain, we share the updates. At that time we were just taking some baby steps here in Calgary, and those were the years ke jisme pehla event ho raha tha. And this year is the 5th annual event, which means it's a completion of half a decade in Calgary, and that shows ke Calgary community ki jo ek dedication hai, commitment hai towards the

0: hours.
1: Pehla saal jo tha, it was 50 kids and one village.
2: 50 kids?
1: 50. Yeah. So the oldest were 50 to 5,000.
2: Wow.
1: And then I remember 2018, it was five villages and about 500 kids.
2: Yeah.
1: And then when I was leaving Pakistan, at that time, hum 2,000 bachon tak pahunch chuke the, about 10-15 villages pe pahunch chuke the. Then we kind of like started journey here as well.
2: Wow.
1: So it's been an incredible journey.
0: Yeah, wow. It has been. Definitely.
2: So it's on October.
0: Kudos to all of you.
2: Yeah. So it's on October the 2nd, Friday night at Sultan Banquet Hall. $60 ticket, or you can get a table for 8, which is a $480. Or sab kapu. It's going to be amazing dinner. I can, you know, jo hai, I can bet you that Sultan, jo apna jo hai, kya naam unka, main to naam bhul gaya unka.
0: Gulam
2: Rasool saab. Yes, unka jo khana hota hai, hamesha acha hota hai. Aur phir aapke saath jo hai, apna मेडिसन के बेटे वो भी जो है परफॉर्म करेंगे एट द एंड लेकिन यूथ डिबेट होगी दिस इज वन ऑफ द हाईलाइट एब्सोल्युटली अमेजिंग लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यू कैन कॉल ज़ैनब एट 403-479-2707 और यू कैन ई ट्रांसफर योर जो है टिकट्स मनी एज वेल इन्फो एट takmeel.org इट्स अ TAKMIL जस्ट रिमेंबर $130 पर किड पर ईयर आई थिंक इट्स लेस देन कॉफी मनी है डे बेसिकली आजकल तो जो है टिमोन्स की कॉफी भी जो है $2 की आती है
0: मीडियम
2: मीडियम या 192 टू बी एग्जैक्ट तो लेकिन यू कैन गेट $11 पर मंथ आई थिंक दिस इज गाइस कम ऑन गाइस आई थिंक वी कैन डू अगर आप नहीं भी आ रहे डोनेट $100 यार यू नो यू कैन टेक इट ऑफ द वन चाइल्ड फॉर अ ईयर I think this is great. Of course, you can call me. You can call Salma ji. Call Zainab Taha. Anyone. I think it's going to be amazing. And you know this. हम में से जो भी ये काम करेगा किसी एक बच्चे को बढ़ाएगा अल्लाह आपको कितना इसका साथ देगा जस्ट इमेजिन आई थिंक वी कैन इवन इमेजिन वी कैन इवन इमेजिन कि आपके बच्चे जो हैं इंशाल्लाह वो है अपना मास्टर्स बनेंगे एजुकेशन में यू नो गारंटी यू दैट तो इंशाल्लाह अपना ज़ैनब तहा एंड आपकी पूरी टीम को
1: मैं
2: बस अल्लाह आपको और हिम्मत दे इंशाल्लाह वी आर विद यू व्हेनेवर यू नीड तहा आई वांट यू बैक फॉर द एआई Let's do the show on the radio show in here.
0: It will be so nice.
2: Huh?
0: For sure. Yeah.
1: We can also have someone from the biological intelligence team.
0: And then we can have a little bit of fun.
2: Yeah, you know, just my number, le lo Zainab se. Then we can do it next month or two, inshallah.
0: Yeah. That will be great.
1: Yeah.
2: And you'll be coming from Takmeel as well.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: I think it'll be nice.
0: Okay.
2: तो गाइस ये थी ज़ैनब एंड ऑफ कोर्स तहा इंशाल्लाह विल सी यू गाइस ऑन अक्टूबर 2nd डोर्स ओपन एट 6 विद एपिटाइजर और बाद में डिनर है एंड ऑफ कोर्स देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इंक्लूडिंग म्यूजिक एज वेल एज द यूथ डिबेट तो विल टेक अ स्मॉल ब्रेक के बाद जो है हमारे पास डॉक्टर यास्मीन जो है यहाँ पर मौजूद है सो विल टॉक टू हर अबाउट हर कॉन्फ्रेंस जो कि अपना नेक्स्ट वीक आ रही है तो इंशाल्लाह विल टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड विल बी राइट बैक डोंट गो एनीवेयर कीप लिसनिंग टू सलाम नंबर कैलगरी ऑन रेडियो सोसंगम 94.7 FM एंड ज़ैनब एंड तहा एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड से हाई टू डॉक्टर नवीद एज वेल आवर गुड फ्रेंड आवर ओल्ड गुड फ्रेंड यस आवर मास्टर तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद
3: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड़ो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओइसे स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक ता देर किस गल दी अज ही डायल करो 587-617-4696 587-617-4696 ओइसे स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 587-617-4696
4: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजुर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड़ लई कॉल करो 403-947

0: ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ 403-404-3500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
1: अपने घर का दूजा ना आया सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
2: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
1: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
2: सिर्फ घर खरीदण ले ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
1: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
2: रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
1: जेकर कर रहे हो घर खरीदन ते वेचन दी प्लानिंग मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उना दी वेबसाइट mandeep.realtor।
2: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 403-617-1868।
0: ਵਾਸੀਓ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਨਰਿਜ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਸ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲ ਅਤੇ ਫੀਮੇਲ ਡਾਕਟਰਸ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਚਲੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਵਾਕ ਇਨ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਘਾ ਵੈਲਕਮ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ। ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਦੇ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 587-617-4696 587-617-4696। ਓਏਸਿਸ ਸਮਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। 587-617-4696।
3: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग, जिथे कदम रखदिया ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान। ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर, जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंदी फ्लोरिंग दा समान। फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल, नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान, कारपेट, हार्डवुड, लेमिनेट, टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम। अज ही इना दे शोरूम ते पुजो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कैलगरी कारपेट एम्पायर। फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ग्रोसरी खरीदन ले हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: ताजियां सब्जियां, फल फ्रूट, दालां, मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा। कीमतां कट ते क्वालिटी A1।
2: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर।
1: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां। हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर, पहली लोकेशन 331-3690 वेस्टमिंस ड्राइव,
1: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू,
2: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड,
1: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्वायर,
2: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे,
1: छेवी लोकेशन 445 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी।
2: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
1: 403-835-2222।

0: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
1: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी।